0: दिल लगाकर आ गया, उनको भी तना बैठना।
1: जी
0: तुम्हें भी किसी का इंतजार था?
1: जी
0: नो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था, मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा था, सुनो तो। सुनना न था तो सामने आए क्यों थे?
2: क्या हाल है तुम्हारा? ठीक मुझे। इस नमक हराम को अपने किए की सजा मिल गई महाराज।
3: अजीत, एक दिन हमने तुम्हारे बाप की बहादुरी को सलाम किया था, आज तुम्हारी बहादुरी को भी सलाम करते हैं।
2: महाराज, बच्चों की बहादुरी से बुजुर्गों का सर ऊंचा होता है, झुकता नहीं।
3: हम कभी नहीं झुकते अजीत, तुम्हारे बलिदान ने आज हमें झुका दिया। तुमने अपना सब कुछ हमारे वास्ते लुटा दिया, आज हम अपना सब कुछ तुम्हारे वास्ते लुटाने को तैयार।
2: तो फिर अजीत की शादी का जल्दी इंतजाम कीजिए महाराज। मैंने कहा था ना, गोरी को इस महल से बहन की तरह विदा करूंगा। विजय, आज वो समय आ गया है।

0: மா மா
1: பேட்டா, ये डोली कैसे?
0: यही तो ताज्जुब की बात है माँ, गए थे दूसरे की शादी करवाने और खुद अपनी हो गई।
1: हाँ?
0: गोरी
1: गोरी
0: गोरी

हर कस्म में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में ममता का डर है।
1: चलिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में ममता का डर है।

0: Sitaram and welcome to another edition of NCN Radio's special Navratri feature. On the fifth day of Sharida Navratri, Hindus are advised to wear yellow and offer prayers to Goddess Skandamata, who is the fifth incarnation of Goddess Durga and represents compassion and motherhood. Here now are some devotionals dedicated to the feet of Mata Skandama.
1: Jai Mata Di. माँ दुर्गा जी की पांचवी शक्ति का नाम स्कंद माता है। नवरात्र पर्व के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। आइए बड़े भाव से महादेवी स्कंद माता मंत्र का गायन करते हैं।